श्री देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म समृद्ध स्वामी श्री माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व

जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। धरम सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्याल

सुनो अरज गिरदारियो सतगुरु राखो लाज मारी राखो लाज हमारी। अच्छा बोलियो, गुड। एक और बोलू, एक और बोलू, लिख दो।

रूम मेरा, लिख दो मारे रूम रूम मेरा, नैना में नरसिंगा लिख कौन में गरु ज्ञान, नैना नरसिंगा लिख दो कौन में गरु ज्ञान, लिख दो मारे रूम मेरा, लिख दो मारे रूम मेरा, आता मैं कमला पति लिख दो भुज पे लिख

बाल लिख दो मारे रूम रूम मेरा, लिख दो मारे रूम रूम मेरा। बोलो सतगुरु देव की जय। अच्छा बोलिया बढ़िया। और बोलो तीन तीन। हाँ आना गरु।

गौरी साथ ले के नंदी साथ ले के आना आना गरुसा मेरे या आना आना गरुसा मेरे या।

सीता साथ ले के आना गरुसा मेरे आना आप आना गरुसा मेरे यान तुम्हें भरम रूप में आना तुम्हें भरम रूप में आना विष्णु साथ ले के लक्ष्मी साथ एके आना आना गरुसा मेरे यान आना आना।

0: Sridipnaran Bhagwan ki jai, Shri Satagurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देवेश्वर महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द ब्लेसिंग ऑफ भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी, देवपुरी जी एंड होली गुरु जी,

देवकी माधव कृष्ण भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। इन आवर बॉडी देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट functions. We have got five different bodies. Some calls them, or in Vedanta they call them koshas. Koshas have three

Slowly, slowly, glass milk, you become nice, happy and relaxed. But you drink slowly, slowly vodka or whiskey. After half glass, you feel here zzzz, the bees inside. Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए। बोरिंग सिटिंग अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग। केम There was a beautiful small Shiva temple near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there's a room. They said, yes, there's one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the bandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue, gold, gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep. And 2 o'clock, he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. Babaji gaav ke andar aaye. Dekha ki Shankar ka mandir, pujari ko kaha ki rehne ke liye jagah hai, ki ye kamra hai. साधुओं के लिए वहां रुक गया। श्याम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं। कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं, पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा। टेम्पल डोर वॉज ओपन, शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार। ही रेंग द बेल लॉन्ग and the village people were running, coming, what happened? Strong people like Jasraji and Premananji, and they were running, came, what happened, Panditji?

statue is stolen. Do you know anybody? I don't know any. If I stay anybody here, one sadhu is staying in the room. They went there, there's no sadhu. They took the torch light, they saw the steps running. That time was no concrete, Sisi road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running, and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई. पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर. कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए और कोई नहीं है. जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं. बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए. उस समय ये सीसी रोड डामर की रोड होती नहीं थी. किधर भगा देखा उनके पैरों के चिन्ह तो बहुत से लोग उधर जवान लोग दौड़े. जाते जाते चार बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया. क्या नहीं? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है. जो सोवत है वो खोवत है. गाते हो कि नहीं?

0: भाव।
1: उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता। बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हाँ, तपस्या आटीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते। आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। Dawn came and that Babaji looked behind, they are running some bodybuilders. Now what to do? If I will tell, Babaji is thinking, that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work,

बरसी, प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरु जी सेड देयर इज अ नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर, डिवाइन लाइट, एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरु जी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरु जी सेड यस। आई सेड देन डोंट इमेजिन महाप्रभु जी हियर इन आज्ञा चक्र बिकॉज यू गिव टू मच टेंशन हियर। गो इन द हार्ट एंड हैव हिम इन द हार्ट। ओके, व्हाट गुरुजी सेड? ओके, नेक्स्ट डे व्हेन आई केम, गुरुजी सेड, महेश यू कंफ्यूज्ड एवरीथिंग। आई सेड व्हाट? आई ट्रांसपोर्ट महाप्रभु जी फ्रॉम आज्ञा चक्र टू अनाहत चक्र। Now, the settlement from transport from Jordan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anahat? Anahat Chakra or Agya Chakras? So, but I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion.

the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Ajna Chakra. There is different seva, different things. Then Guruji said, when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning, when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva, 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana a gaya, to tumhari buddhi brisht ho jayegi. Isiliye kaha ki bhojan karne se pehle भगवान को भोग दिया जाता है. मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा. हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए. ब्रह्मा अर्पणम, हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं. भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं. उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्तियां या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है. एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता, तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला. तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान. तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा. महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है. तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा. तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा. तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप. दूसरे दिन आया तो बाप जी कहते, मेरे तो है गड़बड़ कर दी. मैं क्यों, कि महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहत से, आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो. मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप. बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी. तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को ये अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है. वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच नहीं रहा है. खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए. अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो. इसलिए कहा है कि हमारे महारि पातांजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर, चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे. लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा. अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है. अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है. जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा. इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान.

मेहमान आती हैं और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंग नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसी। दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स। विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड। देन दिस रेडियंस, द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड, then you are beyond this all material vibrations. From you is only divine radiance is coming. And anyone who comes closer, sits around you, go around the temple, you are in this Abhamandal inside. Deep Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की।

देवादिदेव देवेश्वर महादेव अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

0: जड़ से जहां तक।
1: डियर सिस्टर्स ब्रदर्स गुड आफ्टरनून। द लास्ट टू लेक्चर्स थ्री वॉज वेरी साइंटिफिक एंड वेरी माय फॉर मी वॉज वेरी नॉलेजेबल। I am

गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुष महादेव की जय। धर्म सम्राट।

0: महादेव सत्य सनातन
1: धर्म की जय।
2: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।